हमारी बीच में तफरका पैदा कर दिया है, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से जुदा कर लिया, भाई को भाई से जुदा कर लिया है, ये अजीब सा कितना लेके आया है, जरा समझाओ तो सही। वलीद बिन मुगीरा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की चंद आयात सुना देते हैं। वलीद वापस आता है, उसका रंग उड़ा हुआ होता है। जब उसके दोस्त उसके साथ ही देखते हैं तो आपस में कहते हैं, लगता है मोहम्मद का जादू उस पर भी चल गया है, यह जिस चेहरे से गया था ये उस चेहरे से वापस नहीं आ रहा। जरा अल्फाजों पे गौर करें, वलीद बिन मुगीरा कहता क्या है। वलीद कहता है, वल्लाही अल्लाह ताला की कसम, क्या मुशरिक भी कसम खाते थे? जी मुशरिक अरब अल्लाह ताला को मानते थे, वो ये मानते थे कि अल्लाह ताला वाहिद रब है, वो ये मानते थे कि अल्लाह ताला उनको पैदा किया है, वही मुश्किल उठा, वही हाजत रवा है, वही खालिक है, मालिक है, वही तदबीर कर दिया, मानते थे। लेकिन उनका एक मसला था, अजअल अलआलिहत इलाहन वाहिदा इन हाज़ा लशयउन उजब, एक महबूद हम नहीं मानते, अल्लाह ताला को रब तो मानते हैं लेकिन एक महबूद की जो बात है ये हमारी अकल से बाहर है, ये हैरान कन बात है, ये अजीब बातें करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलीद कहते हैं, वल्लाही अल्लाह की कसम, लकद समित मिन मोहम्मद आनिफन कलामन, मैं अभी अभी थोड़ी देर पर मोहम्मद से एक कलाम सुन के आया हूं, मा हुआ मिन कलाम इंस वलल जिन, अल्लाह की कसम जो कलाम में सुन के आया हूं ना तो यह इंसान के कलाम है और ना ही जिन के कलाम है। वइन लहु लहलावतुन वइन अलैहि लतलावा, मिठास है इन अल्फाजों में, खूबसूरत अल्फाज हैं ये। वइन अलाहु लमुसमिर वइन असफलहु लमुग़दिक, इसमें खैर ही खैर है, इसके लफ्जों को देखें, फायदेमंद है, फ्रूटफुल है, खूबसूरत है, इसके मायने को देखें उससे ज्यादा खूबसूरत है। आखिर में कहते हैं, वइन्नहु यअलू वला युअला अलैहि, और यह सब पर बुलंद है, इस चीज इस कलाम पर कोई चीज दूसरे कलाम बुलंद हो नहीं सकती। यह गवाही है एक काफिर की। यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दी, उनके दिलों पर कुफर की मोहर लगी हुई थी, वो यही चाहते थे, अल्लाह ताला को तौफीक नहीं दी, लेकिन गवाही उनकी जुबानी अल्लाह ताला ने हमें सुनाई है। यह तो उस जमाने का था, 1400 साल पहले। आज के जमाने के एक काफिर की यह गवाही भी सुन लें। जोसेफ रेनन जो फ्रेंच फिलोसोफर है मशहूर, यह कहता है, मेरी लाइब्रेरी में जो घर में है हजारों किताबें हैं, हजारों सैकड़ों नहीं, उनमें से अक्सर किताबें मैंने एक मरतबा भी नहीं पढ़ी, सिर्फ खूबसूरती के डेकोरेशन के लिए, मुझे शौक है किताबें इकट्ठे करने का, और बाज ऐसी किताबें जो मैंने सिर्फ एक मरतबा पढ़ी है। मेरी पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ एक ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ने का दिल करता है, और खासतौर पर जब मैं परेशान होता हूं, गमजदा होता हूं, मेरा दिल करता है कि वो किताब पढ़ूं और मेरी परेशानी उस किताब को पढ़ने के बाद दूर हो जाती है, और वो किताब है मुसलमानों की किताब कुरान, कुरान मुसलमानों की किताब। आखिर में वो कहता है, अगर कोई ये जानना चाहता है, ये अकीदा रखना चाहता है लोगों में से कि कोई किताब आसमान से नाजिल हुई है, तो वो ये कुरान है कि दूसरी किताब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो खसूसियात हैं जो दुनिया की किसी किताब में भी नहीं है। एक फ्रेंच फिलोसोफर गवाही देता है, जब वो परेशान होता है कुरान मजीद पढ़ता है, हम परेशान होते हम क्या पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, क्या हो गया आज हमें, हमारा कुरान मजीद के साथ ताल्लुक कैसा है, यह